0: उधर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जारी सालिसी कोशिशों के सिलसिले में तेहरान पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता दो दिनों में दूसरी बार ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की है। ये मुलाकात ईरान और अमरीका के दरमियान माहदे के हवाले से तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल के लिए थी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे ज़रूर मिले हैं, ताहम ईरान के यूरेनियम ज़खायर और आबनाए हुरमुज़ के कंट्रोल जैसे अहम मामलात पर अब भी तातुल बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकराती अमल में दो बड़ी रुकावटें दरपेश हैं। एक जानिब अमरीका फौरी तौर पर जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत चाहता है, जबकि ईरान इससे कबल 30 रोज़ा एतमाद सादी का वक्त देने पर जोर दे रहा है। दूसरी जानिब आबनाए हुरमुज़ में फीस या टोल सिस्टम के क़याम पर दोनों ममालिक के दरमियान शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुज़ाकरात का हतमी मुसव्वदा तैयार हो चुका है, ताहम ये दो बड़े निकात अब भी किसी हतमी माहदे की राह में रुकावट हैं। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 35 जहाज़ जिनमें ऑयल टैंकर्स, कंटेनर जहाज और दीगर तजारती बहरी जहाज शामिल हैं, ईरानी हुकाम की इजाज़त से आबनाए हुरमुज़ से गुजरे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंगी तैयारियों के बाइस ताइवान को 14 बिलियन डॉलर्स के हथियारों की फरोख्त आर्जी तौर पर रोक दी है। अमेरिकी बहरिए के कायम मकाम सेक्रेटरी हैंकाओ ने सेनेट में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अमेरिका अपनी फौजी जरूरियात के लिए असलहा महफूज रखना चाहता है। उनका कहना था कि ताइवान को हथियारों की फराहमी का फैसला बाद में अमरीकी वजीर दिफा पीट हेक्सेथ और वजीर खारजा मार्को रूबियो करेंगे। अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ऐलान किया है कि वो 30 जून 2026 को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगी। वाज़ेह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की करीबी साथी समझी जाने वाली तुलसी गबार्ड के दौर में खारजा पॉलिसी खासतौर पर ईरान जंग के हवाले से कई मुतनाज़ मामले सामने आ चुके हैं। अगरचे तुलसी गबार्ड ने अपने इस्तीफे की बुनियादी वजह शौहर की बीमारी को बताया है, लेकिन अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान कई दाखिली इख्तलाफात भी सामने आए हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स PFUJ के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाले नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन के एलामिये में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका की तरामीम को मुस्तरद करते हुए उन्हें एक सिया कानून करार दिया गया है। एलामी में कहा गया है कि पीका एक्ट खासतौर पर सहाफ़ियों को ज़बरदस्ती दबाने और पाकिस्तान के मीडिया के मंजरनामे को कुचलने की सहूलतकारी के लिए तैयार किया गया है। एलामी में पार्लियामेंट से मुतालबा किया गया है कि वो इन तमाम कवानीन पर नज़रसानी करे जो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के मुनाफी हैं। एलामी में कहा गया है कि हम हुकूमत के इस पुख्ता वादे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं कि इन कवानीन को कभी भी प्रेस के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि हुकाम ने इसके बजाय अदालती हरासानी की मुहिम को तेज कर दिया है। बलूचिस्तान के दो अजला ज़ियारत और चागी में नामालूम मुसल्ला अफराद ने एक हमला करके मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि एक पुलिस ऑफिसर समेत चार अफराद को अगवा कर लिया गया। खबरों के मुताबिक नामालूम मुसल्ला अफराद ने जिला ज़ियारत में मांगी के इलाके में हमला करके 5 ट्रक्स को नजर आतिश किया। ये ट्रक कोयले से लोड थे जो हरनाई से पंजाब जा रहे थे। उधर क्वेटा के करीब नामालूम मुसल्ला अफराद के हमले में 2 सरकारी अहलकार हलाक हो गए। इस दौरान जिला पिशीन में CTD की एक कार्रवाई में हुकाम के मुताबिक 4 मुबैना शिद्दत पसंद हलाक कर दिए गए। उधर जिला कल्लात से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक सीनियर अफसर समेत 2 अहलकारों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। उधर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से अडियाला जेल में मुलाकात करवाई गई है जो 1 घंटे से जायद जारी रही। उधर इमरान खान और बुशरा बीबी के पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत के मामले पर उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने एक बयान में कहा है कि अडियाला जेल हुकाम ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत नहीं करा कर दिए, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर समाअत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है। खालिद यूसुफ का कहना था कि पावर ऑफ अटॉर्नी होगा तो किसी अपीलेट फोरम पर किसी फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। और आखिर में ये खबर कि कल GTA में गैस की कीमत में 4 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान है। इसके साथ ही अब तक की खबरें ख़त्म हुई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: خبریں اس بردین صاحب کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003. آرمی چیف اور چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایران پہنچ گئے ہیں, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہاں پہ ہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ان کا استقبال کیا, جبکہ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق اس دورے کے دوران خطے میں قیام امن اور دیگر امور پر بات چیت ہوگی. آرمی چیف کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی جنگ بندی کی تجاویز پر ایران اپنا رد عمل دینے کے قریب ہیں. امریکہ نے ایران کو جو تجاویز بھیجی تھی ان میں سے ایران کا جوہری پروگرام بند کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے سمیت کئی نکات شامل ہیں. امریکی صدر کچھ روز پہلے خلیجی اور دیگر ملکوں کے کہنے پر ایران پر حملہ اپنا مؤخر کر چکے ہیں اور کہا کہ لگتا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے کا اچھا موقع ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہا تھا کہ ایران نے جنگ ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے. ایران کی طرف سے تمام راستے کھولے ہیں. اس سے پہلے ایران کے دورے پر موجود وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تہران میں صدر مسعود پزشکیان, وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر اعلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ وہ گئے تھے, 3 دن پہلے وہاں رہے ہیں, اور یہ بھی اطلاعات رہی تھی کہ چیف بھی وہاں, فیلڈ مارشل بھی جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ چکے ہیں. اب اگلے 48 آورز بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور امریکی وزیر خارجہ بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل آصف منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں. امید ہے ایران سے معاملہ جو ہے وہ طے پا جائے گا. ادھر امریکی صدر ٹرمپ کے بعد صدر پوٹین نے چین کا دورہ کیا اور اب پاکستان کے وزیر اعظم چین پہنچے ہیں. تو ہر طرف سے کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل معاملہ ہے یہ, کیونکہ اپنا ہرمز کی وجہ سے تیل کی ترسیل کے معاملات جو ہیں پوری دنیا میں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو ہوپ فلی امید یہ کی جانی چاہیے کہ چیزیں انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف چلی جائیں گی. 4165930003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM. تھوڑی دیر میں کوشش کرتے ہیں آپ کو ہم لیے چلیں مکہ مکرمہ انشاءاللہ. کامران رشید صاحب وہاں پہ موجود ہیں حج کے حوالے سے, وہ گروپ اپنا لے کے گئے ہیں اور ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, مزید ڈیٹیل ان سے لیں گے. اسٹے ٹیون.

विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम। लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट, अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस। कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852, दैट 6477679852। विशाल त्रिवेदी।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM का फिर आपको ले चलेंगे सऊदी अरब मक्का मुकर्मा। कामरान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम सलाम अशरफ साहब। मैं माफी चाहता हूँ, कुछ मौका फीलिंग ऐसी थी कि कुछ जज्बाती कुछ ऐसी थी कि वो आपका कॉल ऐसे लम्हे में था।
3: नहीं, इसमें कोई शक नहीं,
4: मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने याद रखा।
3: अच्छा, अब जैसे मैंने जिक्र किया 18 मई थे मीना में जो रिजर्वेशन कुछ स्पॉट्स की जो होती है, तो मतलब अगले साल के लिए अभी से कम्प्लीट हो रही है चीजें?
4: जी अशरफ साहब, ये मैंने अर्ज किया था जैसे कई बार आपके प्रोग्राम्स में कि अगले साल की पॉलिसीज बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये तो हमें भी नहीं थी कि अभी इस साल के हज अभी हुआ मुकम्मल नहीं है, और इतनी जल्दी उन्होंने ऑफिशियल कहा कि इस लिंक पर क्लिक करके आप मीना के अंदर अपनी जो प्लॉट जिसको या जून कहते हैं आप, हमारा जून क्या है, जून ए है, जून बी है, कैटेगरीज जो VIP कैटेगरीज हैं, अगर आपने वो साइन करवानी है, बुक करनी है, तो 18th of this month को आप उसकी अलॉटमेंट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करवा दें। उसके बाद हम पाबंद नहीं होंगे कि आपको आपके VIP जून या आपके करीबी जो है वो आपको प्लॉट्स असाइंड हो सकें। जाहिर है कि हमारी टीम्स मौजूद थी यहाँ तैयारियों में भरपूर, और हमारा चूंकि अंडर पाकिस्तानी पासपोर्ट था, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लोग भी थे, तो कल भी जिद्दा में बहुत बड़ी हज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं, और इसी बात पर डिस्कस किया गया कि आने वाले वक्त में हम अपने प्राइवेट हजाज काम के लिए क्या मजीद बेहतर फैसिलिटीज कर सकते हैं, और इन एडवांस हमने अपनी जो अलॉटमेंट है वो रिजर्व करवा दी है, और मुझे ये लगता है कि जैसे ये हज पूरा होगा अगस्त तक की डेडलाइन होगी, हमें अगस्त तक के लिए वो पेमेंट्स का मार्जिन देंगे और नेक्स्ट हज जो है वो विद इन सितंबर क्लोज हो जाएगा।
3: अच्छा,
4: इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम सामईन से, सुनने वालों से, कि वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट मीन्स पाकिस्तानी पासपोर्ट जरूर बनवा के रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे जरूरी चीज जो डॉक्यूमेंट है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर है। हमें फिजिकल पासपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर, उसकी एक्सपायरी और उस पर नाम। तो आप उन पे इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। आपको हमेशा अशरफ भट्टी साहब के प्रोग्राम की वसातत से इन एडवांस मालूमात मिलती हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी को जो बेहतर से बेहतर सर्विसेज हों, इतलात हों, बेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो मिल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इस मौके पे हम खुद मौजूद हैं, तो मैं आपको ये इतला इन एडवांस दे रहा हूँ। किसी भी आप एजेंट्स के साथ जाएं, पाकिस्तान में हों, ओवरसीज हों, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपके पास पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
3: इधर एक सवाल
4: है, अगर आपको तावन चाहिए हो।
3: जी, अब ये सवाल आप तावन वाले बहुत से लोग हैं जिनका मतलब 5-5, 7-7 साल से उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, जाहिर है कैनेडियन पासपोर्ट मिल गया और जो है नैकॉप होता है, तो जो पुराना पासपोर्ट है अगर, तो वो रिन्यू हो सकता है, और आप उस हवाले से हेल्प कर सकते हैं?

0: जी बिल्कुल हो सकता है, अगर आपने नैको बनाया हुआ है और आपके पासपोर्ट पाकिस्तानी 7 या 8 साल बने ही नहीं है, पुराने पड़े हुए, इससे भी ज्यादा के लिए नैको भी बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1: ठीक है।
0: आपका जो नया पासपोर्ट है वो बिल्कुल इजीली बन सकता है क्योंकि आप नादरा के सिस्टम में इनरोल हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो इससे आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। उसके लिए अगर कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और रब्ता करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, यही डायरेक्ट नंबर भी है 9052753555। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे यहाँ भी हाल ही स्टूडियो की ग्रुप्स की एक्टिविटी देखनी हो और आपने देखना हो कि क्या इंतजाम हैं, हम कहाँ हैं, किस वक्त क्या हो रहा है, वो भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल सकती हैं। आप सोशल मीडिया पे हमें डील देख सकते हैं, आप इंस्टा पे हमें चेक सकते हैं, या आप हमें अपना व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको अपने लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं। और हमारा सोशल मीडिया के लिए आप रब्ता करें तो देखना चाहें सर्च करिए ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स CA पे, आप हमसे रब्ता कीजिए, नंबर है व्हाट्सएप पे 905-275-3555
1: से नंबर ऑन व्हाट्सएप भी है, globaltravel786@gmail.com इनकी ईमेल एड्रेस है। और अगले साल अगर आप हज पे जाना चाह रहे हैं तो अभी से आपको जो है वो कोशिश करना होगी, अभी से इसकी तैयारी करना होगी। कारण भाई कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप?
0: ये बहुत सारी ढेरों दुआएं आप सब दोस्तों के लिए, सामेईन के लिए, और आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है।
1: वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच, और हमारे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले हफ्ते आपसे फिर बात करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया करुण भाई, अस्सलाम वालेकुम। कामरान रशीद से हमारे साथ मौजूद थे, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर के CEO हैं, इस वक्त हज के लिए गए हैं मक्का मुकरमा, हज के मनासिक कल से शुरू हो जाएंगे, अभी उमरा उन्होंने कंप्लीट किया है, तो हमने कहा कि इनसे वहाँ की सूरत हाल जो है वो आप तक पहुँचा दें। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हो रही है, पाकिस्तान के जो है टीम का 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। शाहिन शाफरीदी अभी भी कप्तान रहेंगे, बाबर आजम भी हैं, लेकिन अब्दुलरजाक का नाम रिजवान का नाम जो है उसमें शामिल नहीं है, हसन अली भी नहीं है, इमामुल हक भी नहीं है, मोहम्मद नवाज़ भी नहीं है, फहीम अशरफ भी नहीं है, और उसमें नए खिलाड़ी भी आए हैं, दानियाल को रखा गया फास्ट बॉलिंग के लिए, इसके साथ साथ सफियान मुकीम भी हैं और साइम अयूब, फ़ख्र जमान और उस्मान खान ज़ख्मी हैं। अब बहुत सी इस पर तनकीद भी हो रही है, लेकिन बहरहाल देखिए क्या सूरत हाल बनती है। बैलेंस टीम तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद अवेलेबलिटी यही है, और जिस तरह से शाहिन शाफरीदी और हारिस रऊफ और शाहिन शाह जो नसीम शाह हैं इनकी कारकर्दगी है उस पर बहुत से सवाल हैं, लेकिन क्या कीजिए, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। सिलेक्शन कमेटी पर भी बहुत बात हो रही है और इसके साथ साथ कप्तानी के हवाले से बात हो रही है, लेकिन कप्तान को टाइम ज़रूर मिलना चाहिए और शाहिन शाफरीदी को मज़ीद जो है निखरने का मौका मिलता है, ज़ाहिर है जब आप पर ज़िम्मेदारी पड़ती है। तो अब जो भी टीम है यही टीम है, देखते हैं 30 तारीख से जो टूर्नामेंट जो सीरीज़ शुरू होगी उसमें ये कैसी कारकर्दगी दिखाती है। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे पाकिस्तान, स्टे ट्यून।
2: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ, या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200।
3: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
3: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
3: दैट्स वंडरफुल।
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट BramptonAppliances.ca।
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही, तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR Auto Service, 921 Pape Avenue।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
6: Yes.

0: 973-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमे आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
3: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स, अब मिसिसागा के बाद स्कारबरो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन, 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन, 905-232-5000।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: और जनाब, चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाइए। ये 3920 ग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा में है। अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है। आप वीकेंड पे आपके लिए 2 से 12 बजे तक ओपन है। 9055147877, 9055147877। और हैमिल्टन में एक 3-bedroom, 2-washroom का कॉन्डो है, 2 car parking के साथ। 379 इसकी प्राइस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए या टेक्स्ट कर दीजिए 4163005600, 4163005600, या कॉल कर लीजिए, तमाम डिटेल आप तक पहुंच जाएंगी।
3: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 4164668782, 4164668782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू।
4: करम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, 9058280009। यू लॉग इन हो अलकरम ज्वेलर्स.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।